प्रमुख विरह समाए गुरी शर गु गौर बर्मा गुर कृपा की माए जय हो जान आका नाहे कह न कतन जाए गुरे के दे बुझाए सवन जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए तीर्थ न वजे तस पावा विम्बने के नाए करी जेती सिर तु पाई बेका विंखे में मिल ले मत विस्खरण जमर महान जय गुर की एक सुनी गुरे के दे बुझाए सवन जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए जय चुप चारे आर जा होर न सुनी होए नाव कंद विच चानिए नाव सले सब कोय चंगा नाव रकाए के जस किर जगले जेतिस नरन आवे ता पर न पूछे के कीता अंदर कीता का दोषी दोष त्रे नानक नी गुन गुन करे गुन बंतिया गुंदे तेह कोय न सुचे जेतिस गुन कोय करे सुनिए सिर पिर सुना सुनिए तरथ लखस सुनिए तीपलो पाताल सुनिए तो न सके काल

है बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। पारिये हाथ तरे तंदे, पानी तूते हुतेस्के, मुत्पलिती का परा हो।

पाए जाए। एव अंत न जाने कोय बहुता खये बहुता होय बदसाय बुछताओ उचे ऊपर उछनाओ एवर हुचे होवे कोय तिसुचे को जन सोय जेवर आप जने आप नानक नदरी कर में।

सके कोय, जे को कहे अकन पाए, ओ जाने जितिया मकाए, आपे जाने आपे दे, आके सेवे के जिसनो बख्शे सुसलाह, नानक पातशाही पतिशाह।

वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह एंड सो आई लाइक एंड encore and so I'd like you now to turn to the Sangat and I'd like to present Singh Sab Devinder Singh and Manu Kar Khalsa Wahe Guru Ji Ka Khalsa Wahe Guru Ji Ki Fateh